0: मिर्ची, इट्स हॉट.
1: वन इंटायर ईयर आफ्टर डेटिंग योर बॉयफ्रेंड, यू मेट हिज फर्स्ट कजन और आपने रियलाइज किया आपका सच्चा प्यार तो बॉयफ्रेंड का कजन है रे.
0: द सीक्रेट बॉक्स.
1: अगर आपकी जिंदगी में ऐसा मुकाम आ गया है, देन इट इज टाइम फॉर यू टू गेट रोशिफाइड, डोंट यू थिंक? हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. एंड व्हाइल यू डू दैट, टेलिंग मी योर कन्फेशन, मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो नॉटी गर्ल.
2: हाय रोशी,
1: कैसे हो आप?
2: मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ. आप स्कूल जाते हो क्या? आपकी कन्फेशन हैज समथिंग टू डू विद स्कूल, बिकॉज यू साउंड लाइक अ लिटिल स्कूल गर्ल.
2: I don't know. People keep on telling me that.
1: हाँ, लेकिन आप कितने साल के हो?
2: मैं अच्छा हाँ मैं क्या कहते हैं मैं 21 की हूँ.
1: अच्छा हाँ मैं 21 की. आप सोच के क्यों बता रहे हो? Are you sure you are 21 years old? हाँ
2: ऐसे ही थोड़ा मेरे को थोड़ा हेजिटेशन होता है ना अपने एज बताने में.
1: क्यों लेकिन? अच्छा हाँ, बट बिकॉज यू आर साउंडिंग सो मच यंगर. बट मिस 21 ईयर ओल्ड सीक्रेट कॉलर, क्या है आपका कन्फेशन?
2: सिंस मैंने आपको भी बता ही दिया है कि मैं 21 की हूँ एंड मेरा कोर्स ना खत्म हो चुका था. तो आई वॉज लाइक कि मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ एंड सिंस मेरा कोर्स भी खत्म हो गया था एंड मैं क्या यार मुझे अब जॉब करनी है. तो मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी. मैंने 2-3 महीने इंटर्नशिप की बहुत, लेकिन स्टिल कुछ नहीं हो रहा था. मैंने सब कुछ करके देख लिया. मैंने पहले तो मैं कुत्तों की तरह काम करा है लोगों ने और स्टिल मेरे को ये जॉब नहीं दे रहे थे. तो मैंने साम दाम दंड जो हो सकता था सब कुछ किया रोशी, लेकिन स्टिल मुझे जॉब नहीं मिल रही थी. फिर मैंने देखा कि मैंने ना नोटिस किया कि मेरे जो बॉस है वो ना बहुत ऐसे रोमांटिक सी बातें पता नहीं करने लगते हैं मेरे से जब भी मुझे देखते हैं एंड चलते फिरते लाइक मुझे चेकआउट करते रहते हैं, मुझसे बात करते रहते हैं. तो ना ऐसे उनकी थोड़ी ऐसी रोमांटिक जेस्चर्स जो है उनके ऐसे रहते हैं. तो मैंने सोचा कि चलो एक और लास्ट ट्रिक करके देखते हैं. तो मैंने भी ना वो रेसिप्रोकेट करना शुरू कर दिया. ठीक है, उनको मैंने भी उनको भाव देना स्टार्ट कर दिया. उनके साथ मैं 1-2 डेट्स पे गई, उनको मैंने अच्छे से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की मैंने उनसे एंड फिर फाइनली ऐसे बहुत टाइम के बाद मेरी अभी रिसेंटली जॉब लग गई. ठीक है, हाँ मतलब जिसे कहते हैं ना कि लास्ट ट्रिक वो काम कर गया, कुछ और काम नहीं किया बट मेरी जॉब लग गई.
1: तो अब क्या सीन है आपका और आपके बॉस का? कंग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग योर जॉब, बट क्या अब आप और आपके बॉस आर यू गाइस सीइंग ईच अदर या क्या सीन है?
2: वही है, अब जैसे पीठ पीछे बुराई मैं करती हूँ उनकी, जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ, बट वही फेस पे तो बोलना पड़ता है और मेरा बाबू हो मैं इसका और क्या.
1: आई एम जस्ट होपिंग कि आपके बॉस ये ना सुन रहे हो. और ऑन दैट नोट, हियर इज सम रोशिफिकेशन फॉर यू फॉर योर एब्जेक्ट ऑनेस्टी.
3: यू've been रोशिफाइड.
1: थोड़ा संभाल के चलना मिस्ट्री कॉलर, बॉस को असली प्यार हो गया और आपको नहीं हुआ ना तो लेने के देने बढ़ जाएंगे. ठीक है? इतनी क्यूट है तू. ऑल द बेस्ट टू यू. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरी वेरी क्यूट मिस्ट्री कॉलर की तरह यू हैव अ कन्फेशन टू मेक, व्हाई डोंट यू डू इट ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

Calm down, my bhagjano. Let me tell you something very important for your relationship, especially if you're a guy. Dhyan se sunna. Agar wo aapse ye keh rahi hai, apne naye naye relationship mein, yaar hot pink sale lagi hai, thode se cosmetics khareed de, ya phir yaar phone khareed de, uske baad main tere saath chutti par chali jaungi, ya phir yaar ye lehenga dila de, best friend ki shaadi ho rahi hai, then chances are that aapse zyada she's into your wallet and you don't want to be taken for a ride, do you? Aisa ek baar ek ladki ne koshish ki thi mere bhai ke saath karne ki, and he was like, yaar वैसी मेरे पास पैसे कम है, ऊपर से तू मुझसे पैसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी है, सो दैट यू कैन हैंग विद मी, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग आउट. और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आई थिंक यू शुड डू द सेम थिंग दैट माय ब्रदर डिड. और अगर ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए आपको, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, आई विल बी सो हैप्पी टू हेल्प यू पर्सनली. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: के खराब तो झरना कहीं तेरी दुकान पे पंगा ना लूं मेरे साथ काफी हो गई बक बक
1: बाकी बातें पीने बाद
0: शुभ हो बादशाह
1: बाकी बातें पीने बाद।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: सबसे खतरनाक चीज चेंज नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है बदलाव को पहचान ना पाना। और इस वक्त बॉलीवुड बिल्कुल उसी मोड पर खड़ा है। ऑडियंस बदल चुकी है, उसकी पसंद बदल चुकी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि फिल्मों को ये बात समझने में और कितना वक्त लगेगा। हेलो, आई एम सुरेन सुंदरम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, जहां हर हफ्ते सिर्फ गानों की रैंकिंग नहीं बल्कि बॉलीवुड की धड़कन भी सुनाई देती है। शुरुआत कर रहा हूं विद गाना नंबर 20, व्हिच इज फ्रॉम धुरंधर एंड इट्स स्टिल माय फेवरेट।
0: नंबर 20।

लेकिन इसके बाद एक बिल्कुल नई एंट्री, टाइटल भी क्वर्की, गाना भी क्वर्की, और जब क्वर्कीनेस की बात हो रही है तो अमित त्रिवेदी से बेहतर नाम मिलना मुश्किल है। उन्हीं का कंपोज किया हुआ, उन्हीं का गाया, कुमार भाई के लफ्जों के साथ नंबर 19 पर डेब्यूइंग राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टाइटल सॉन्ग नंबर 19।

0: स्लिपिंग डाउन बाय वन पोजिशन, अरिजीत सिंह का गाया तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन अपनी मेमोरीज की हार्ड ड्राइव से एक ऐसा चैप्टर ढूंढ के निकाल रहा हूँ दैट इज गोना टेक यू बैक टू योर फ्रेंड्स एंड टाइम। इंडिया में एक बहुत अजीब सा ट्रेडिशन है, हम फिल्मों की टिकट्स खरीदते हैं और बिना पता चले उनसे अपनी पर्सनालिटी भी खरीद लाते हैं। कभी हेयर स्टाइल, कभी कपड़े, कभी बोलने का लहजा और कभी जीने का तरीका। एक वक्त था जब तीन दोस्त अगर गोवा जाते थे तो लोग बस पूछते थे ट्रिप अच्छा था, लेकिन फिर एक फिल्म आई, उसके बाद हर दोस्तों के ग्रुप को लगा खोआ जाना तो बनता है।
1: ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे हमेशा।
0: उस फिल्म का नाम था दिल चाहता है। 25 साल पूरे हो चुके हैं इस आइकॉनिक मास्टरपीस को, और सोचो एक फिल्म ने कितनी खामोशी से पूरे देश का एटीट्यूड बदल दिया था। आमिर खान की वो स्टाइलिश दाढ़ी सलोन की रेफरेंस फोटो बन गई, फरहान अख्तर के डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा बन गई। वो सबसे बड़ी बात, उस फिल्म ने हमें सिखाया कि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, कभी कभी साथ बदलने का नाम भी होता है। इसलिए 25 साल बाद भी दिल चाहता है पुरानी नहीं लगती। हर जनरेशन को लगता है कि ये फिल्म तो शायद हमारे लिए बनी थी, और उसी साउंडट्रैक से एक गाना जो आज भी उतनी ही मुस्कुराहट दे जाता है। दिल चाहता है कि मैंने बहुत सारे गाने आपको सुनाए हैं ओवर द इयर्स, ओवर द एपिसोड्स, लेकिन दिस वन इज द फन सॉन्ग। दिस इज वो लड़की है कहां, शान और कविता जी की आवाज में, माय रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक। टॉप 20 रीवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 11.

0: कुछ गाने अच्छे होने के बावजूद वैसे महसूस नहीं होते जितना हमने शायद उनसे उम्मीद लगाई होती है। वे जुनून के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, और जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना ही मुझे लगा कि शायद बात सिर्फ कॉम्पोजिशन की थी ही नहीं। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक दुनिया है, और उस दुनिया की खामोशी, उसका दर्द, उसके किरदार और उसकी तन्हाई, ये सब मोहित सूरी ने बनाई थी। इसलिए जब मोहित और मिथुन साथ साथ आते हैं तो गाने सिर्फ साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं रहते, वो कहानी की धड़कन बन जाते हैं, और शायद मिथुन भी इस बात से वाकिफ हैं।
1: मैं खुद तो एक जरिया मानता हूँ अपने आप को। मुझे लगता है मोहित सूरी एक ऐसे निर्देशक है जो उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि एक धुन की जो बारीकी होती है कि उसको। कई बार मैं एक कंपोजर या एक म्यूजिशियन होने के नाते, मैं एक अरेंजर भी हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत नामचीन अरेंजर रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें और इंस्ट्रूमेंट्स डालूं, मैं इसमें और कुछ करूं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी है मोहित की जो मुझे लगता, वो इसको कभी भी क्या कहते हैं भ्रष्ट होने नहीं देते, वो कहते हैं उसकी सादगी बरकरार रहे, यही हमारा शस्त्र है।
0: इसी पार्टनरशिप ने हमें आशिकी 2 दी, सैयारा दी और बहुत से यादगार लम्हे दिए। लेकिन अगर मोहित सूरी और मिथुन की दुनिया से मुझे सिर्फ एक गाना अपने साथ ले जाना हो तो मेरे लिए हर बार वो गाना होगा एक विलन का हमदर्द, अरिजीत सिंह की आवाज में। दिस वन इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।

चिकन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

डायरेक्टर होता है जो एक्टर्स से परफॉर्मेंसेस निकलवाता है, और एक डायरेक्टर होता है जो विजुअल्स या एक्शन के लिए याद रखा जाता है।

0: इसके सिनेमा में म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बचता, म्यूजिक ही कहानी सुनाता है। इसलिए चाहे जहर हो, जन्नत हो, आशिकी 2 हो, एक विलन हो या फिर सैयारा हो, उन फिल्मों के गाने फिल्म खत्म होने के बाद भी दिल के अंदर चलना बंद नहीं करते। नौ गाना नंबर 5 था बंधु फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन नंबर 4 पर है आवारापन 2 का टाइटल सॉन्ग, जिस फिल्म के साथ मोहित सूरी का कोई कनेक्शन नहीं है। और शायद इसलिए जो इम्पैक्ट हम इंतजार कर रहे थे कि ये साउंडट्रैक क्रिएट करेगा, उस इम्पैक्ट का अब तक थोड़ा इंतजार है। तो क्या है वो चीट कोड म्यूजिक और मूवीज के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन का? मोहित ने खुद उसका राज बताया।
1: सैयारा में भी ये बात बोली जाती है पिक्चर में कि हिट गाने आते हैं चले जाते हैं, 4 महीने बजेंगे, लोग नाचेंगे और चले जाएंगे, बट जो गाने रह जाते हैं ना वो दिमाग में नहीं, वो दिल में रह जाते हैं। जितना आप एफर्ट और इमोशन आप खुद को डालोगे गाने में ना, उतना आप, मुझे लगता है वो यूनिवर्सल होता है। तो गानों में वो अपने आप को फीलिंग डालना, आजकल लोग थोड़ा सा एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, रील्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि 3.5 मिनट का ही गाना बनाओ, सैयारा टाइटल गाना 6.5 मिनट का है। मुझे लगता है जब तक इमोशन रहता है वो खुद रोल अपना पोर्शन काट के रील बना देंगे, मैं क्यों उनके लिए रील बना के उनको ये दूँ। तो आई थिंक हम लोग आजकल दिमाग से गाने बना रहे, दिल से नहीं।
0: यार बस यही फर्क है, और शायद इसलिए आज जब आवारापन 2 आ रही है, सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती है वो खुद मोहित सूरी हैं। क्योंकि पहली आवारापन रिलीज के वक्त फ्लॉप जरूर हुई थी, लेकिन सोचो ना, वक्त के साथ मोहित ने उसे एक कल्ट फिल्म बना दिया। फिर भी एक गाने ने लोगों का दिल जो है वो जीतना स्टार्ट कर दिया है। से दूसरे ही हफ्ते में 5 स्पॉट्स ऊपर एक जबरदस्त छलांग लगाई है अमाल मलिक के इस गाने ने, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, एंड वर्ड्स है रश्मि विराग के। इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर ऑन नंबर 4, दिस इज ये आवारापन। नंबर 4।

My God, Chinnari Chinnari after so many weeks has finally climbed to number 2, even though ye ek remake gana hai, even though it has nothing on the original song from BV number 1 starring Salman Khan and Sushmita Sen. Uske bawajood gana jo hai wo track kar raha hai audience ke saath, and that is why itne high spot par hai. But hey, is hafte ek aur baat pata chali and samajh aaya कि कभी कभी बॉलीवुड एक एक्टर को फ्लॉप डिक्लेयर करने की इतनी जल्दी में होता है कि वो भूल जाता है कि ऑडियंस ने तो उसे कब का अपना बना लिया था. कभी कभी

डूड 11 साल बाद इमरान खान अपने कमबैक फिल्म को अनाउंस कर चुके हैं एंड ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हुई क्योंकि इमरान कभी सुपरस्टार थे ही नहीं लेकिन वो हर कॉलेज की कैंटीन में जरूर रहते थे।

यू माइट नॉट लाइक द फिल्म, लेकिन उनकी फिल्मों में एक ऑनेस्टी थी, एक ऑकवर्डनेस थी जो उन्हें हीरो कम और अपना दोस्त ज्यादा बना देती थी। यस, हर फिल्म नहीं चली। लेकिन शायद इन्हीं फेलियर्स ने इमरान को एक्टिंग से ही दूर कर दिया। लेकिन वक्त का भी अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। जिस एक्टर ने रोमांस के साथ करियर शुरू किया था, वो 11 साल बाद फिर एक रोमांटिक फिल्म के साथ ही लौट रहा है। फिल्म का नाम है अधूरे हम अधूरे तुम, एंड देखते हैं कि इस बार कहानी क्या मोड़ लेती है। और जो रोमांस की बात निकली है, तो उस एक्टर की तरफ चलते हैं जिसने इमरान खान के डेब्यू के 2 साल बाद ही खुद डेब्यू किया था, लेकिन आज वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है। नंबर 1 पर एक बार फिर रणवीर सिंह का गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: इसी के साथ एक और काउंटडाउन, एक और बात फिर साबित हो गई है कि हिट्स आते रहेंगे लेकिन सिर्फ वही गाने और फिल्में टिकती हैं जो दिल में अपनी एक स्पेस बना लेती हैं। नंबर वन पर लगातार डोमिनेट कर रहा है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। बट दैट इज इट फॉर द मिर्ची टॉप 20 दिस टाइम अराउंड। मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक म्यूजिक सुनते रहिए, खुश रहिए, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot.

0: Mitchie. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना बताना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। शो में हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है, सम स्पेशल स्पॉटलाइट्स, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लियर के लिरिक्स एंड कॉम्पोज। The song features Elvis Yadav, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 10। स्टे कनेक्टेड फॉर द काउंटडाउन। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10। हाउ चुप का

0: गाने का नाम साड़ी सुन, सात हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार और गाना नंबर 10। ये उन गानों में से है जिनके मैं लिरिक्स कभी भी ठीक से गा के नहीं बता पाऊंगी, बस धुन गा दूंगी और समझ जाओ।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10 only show on Mirchi, which is all about the hottest pop songs of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Abhi ke abhi jao Instagram pe. फोन हाथ में ही रहता है, कनेक्ट करो @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कई बार ऐसा होता ना कि गाने के बोल नहीं याद रहते, सिंगर कौन है वो भी आप में भी भूल जाएं, लेकिन वो शुरू वाली धुन या कोई इंस्ट्रूमेंटल पीस वो कहीं से भी आप सुने एकदम पूरा गाना याद आ जाता है। सिर्फ गाना ही नहीं, फिर गाने की वीडियो, सिंगर की हिस्ट्री सब याद आ जाती है। हर कंपोजर चाहता है कि उनके गाने में ऐसी टेक अवे मेलोडीज हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंटल पार्ट हो जिन्हें कहीं से भी हम सुने और गाने के साथ जोड़ते हैं। एक आर्टिस्ट जो बहुत सक्सेसफुली ये करते हैं इस बादशाह। चाहे आप गाने के लिरिक्स से अग्री करें ना करें, लेकिन बीच में एक मेडली होती है जिसपे आप थिरक ही जाते हैं, लाइक दिस वन इन मर्सी। माय फेवरेट बादशाह इंट्रो हैज टू बी कर गई चुलका, ये वाला पार्ट सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रोज कि एक बार गाना सुनने के बाद आप उसे गुनगुनाते रहेंगे। नाउ @RJKanika इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको बादशाह के एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। जल्दी जल्दी @RJKanika पर आओ और बताओ ये कौन से गाने का इंट्रो है। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ, साइड वाले को मत बताओ, आई नो बहुत इजी वाला है। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला गाना जो है ऐसे आर्टिस्ट का है जिनकी आवाज ही इतनी आइकॉनिक है दैट यू नो इट्स संजू राठौर। गाने का नाम है बैंगल्स, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक बैंगल्स इज ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एश किंग का किनिया सोनी ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 9।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7

0: फरक की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे. अ नई नवेली एंट्री दिस वीक, डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 6. मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर तारे को इतनी जोर से मैनिफेस्ट किया कि वो हमारे शो में डेब्यू कर चुका है ऑन नंबर 6. उससे पहले हमने सुना गाना नंबर 7 पर ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. यू नो, हर पार्टी में एक टाइम आता है जब सिर्फ पंजाबी गाने चल रहे होते हैं. कहीं ना कहीं पिछले 10-15 साल में हमारा एसोसिएशन विद पंजाबी म्यूजिक ही सिर्फ ये था. एंड जब मैं कहती हूँ ना हमारा, आई मीन वो लोग जिन्हें पंजाबी बोलनी या समझनी नहीं आती. और जितनी भी आती है वो सिर्फ गानों से आती है, अपने फेवरेट आर्टिस्ट और सिंगर्स से आती है. लेकिन पिछले 4-5 साल में आई हैव सीन अ मैसिव ट्रांजिशन. और मेरे जैसे लिसनर के साथ ही, जो पहले सिर्फ पंजाबी गानों को डांस वाले गानों की तरह कंसिडर करती थी, आज आई हैव माई मोस्ट रोमांटिक फेवरेट्स फ्रॉम पंजाबी सॉन्ग्स. एंड ऑनेस्टली अब ये प्रूव भी नहीं करना पड़ता तो क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आती तो क्या मैं गाने सुन नहीं सकती. बिकॉज आर्टिस्ट लाइक AP टिल्लों, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, उन्होंने वो गैप ही क्लोज कर दिया. एंड इस लीग के आर्टिस्ट में एक नए फेवरेट है कॉल्ड कुंवर, जिन्हें आज हम एक स्पेशल स्पॉटलाइट देने वाले हैं. बंदा बटिंडा का है, टोरंटो में बेस्ड. काफी इंटरेस्टिंग उनका म्यूजिक है. पंजाबी फोक को लेके उसमें हिप हॉप R&B का तड़का लगाते हैं एंड बैंगर्स ऑन बैंगर्स रिलीज कर रहे हैं. कुवर का एक गाना है कॉल्ड क्रेजी फॉर यू, जिसके पीछे सब क्रेजी हो गए हैं. सच अ बिग सोशल मीडिया हिट दिस सॉन्ग हैज बीन. और बिल्कुल वही वाली फीलिंग है जो एक बंदे को जब उसे किसी पे क्रश होता है तब जो एक फीलिंग होती है ना, दैट आई हैव गॉन क्रेजी. मैं उसके बारे में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ, दिन में भी, रात में भी, नींद में भी. फोन बार बार चेक करना, गेड़ी मारते हुए बस वही सोचते रहना, दोस्तों से मिलना सो दैट हम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएं कि उसके बारे में ना सोचे. ये सॉन्ग उसी को सेलिब्रेट करता है. इट्स अ वेरी हाई एनर्जी, फुल ग्रूवी, लेट नाइट सॉन्ग भी है, पार्टी सॉन्ग भी है. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आर्टिस्ट का नाम है कुंवर, गाने का नाम है क्रेजी फॉर यू. आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Crazy For You by Coer this week on our Gaana Spotlight at RJ Kanika on Instagram पर आओ. बताओ मुझे कोई ऐसा गाना जो आज भी आप रोज सुन रहे हो पर उसके लिरिक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं. वो पंजाबी गाना हो सकता है, हरियाणवी गाना हो सकता है, इंग्लिश गाना भी हो सकता है, पर अच्छा लगता है तो लगता है. एट RJ Kanika पर आके मुझे बताओ आपका वो कौन से वाला गाना है. नाउ बैक द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 9 हफ्ते से इस काउंटडाउन पर बरकरार अनीश सरकार एंड हृदय का गाना. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5.
1: नंबर 5.

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 3

0: किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।
1: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है शीशा। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उससे पहले नूर खान मधुर एक्सो का आरजू दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi
1: पर, this is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का countdown हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है RJ कनेका। Instagram पर जाओ, connect करो, मेरा handle is @RJKanika। कोई बातें बतानी है, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। Trust me, it really matters a lot। कभी कभी हम किसी को कुछ बात बताते हैं कि हाँ आपका ये काम यहाँ देखा था, या कभी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, करते वक्त शायद हमें रियलाइज नहीं होता कि वो दूसरे इंसान के लिए कितनी बड़ी डील होती है। कुछ तारीफें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर याद रह जाती हैं, कुछ इंटरेक्शंस ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। मेरे लिए वो आप लोगों के मैसेजेस हैं, एंड दैट पर्टिकुलर शो विच आई रिमेंबर, मेरा पहला शो था ऑन एयर, साल था 2019, अगस्त में ही मेरा पहला शो गया था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, एंड मैंने फुल एडमिट कर रखा था शो पर कि मेरा पहला शो है। इतने सारे मैसेजेस आए मुझे आप लोगों के, यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल द बेस्ट करने का, बहुत मजा आ रहा है एक गाने के बारे में, सो यू स्टार्टेड एंगेजिंग विद मी एंड इट मेड माई डे। अब मैं वो पुराना शो सुनती हूँ तो आई रियलाइज कि इतना भी अच्छा नहीं था, पर इट वॉज योर लव, योर कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। और एक आर्टिस्ट के साथ तो ये और भी गहरा होता होगा, किसी फैन का मैसेज या किसी ऐसे इंसान से तारीफ जिन्हें आप खुद अपना आइडल मानते हैं। आई रिमेम्बर ऐसी ही मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी अरमान मलिक के साथ बैक स्टेज एक अवार्ड फंक्शन पे, आफ्टर उन्हें एक अवार्ड मिला। पर अरमान ने मुझे कहा दैट उन्हें जितने भी अवार्ड मिले, सोनू निगम ने जब एक बार अरमान को फोन किया था और तारीफ करी थी कि बॉय यू किल्ड इट, मैं तेरा गाना सुन रहा था रेडियो पे और मजे आ गए, सोनू निगम का वो कॉम्प्लीमेंट अरमान के लिए हर अवार्ड से ज्यादा मीन करता है। पिछले साल इसी शो पर मेरी सोनू निगम जी से बात हुई थी और मैंने उनसे इस बारे में पूछा, एंड दिस इज व्हाट ही सेड।
3: अरमान टोल्ड मी दैट कोई अवार्ड या कोई वैलिडेशन उसके ऊपर नहीं है, ही सेड सोनू निगम कॉलिंग मी कि तेरा गाना रेडियो पे सुना है और तूने अच्छा गाया है, इज द बिगेस्ट अवार्ड ही हैज रिसीव्ड।
4: मैं बिल्कुल इस फीलिंग को समझता हूँ। जब हमारे बड़ों ने हमारे बारे में कुछ कहा है, जब मंदाड़ी साहब ने मुझे बैक स्टेज कहा था एक बार, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम, मार्वल एट द वे यू सिंग, एंड यू शुड हैव, यू आर बोर्न इन द रॉन्ग एरा, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम्स, वी वुड हैव गिवन यू द राइट कॉम्पिटिशन। ये मुझे अब इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। लता जी बोलें, मुझे सोनू निगम पसंद है, जगजीत सिंह बोलते थे मेरा फेवरेट है सोनू निगम और एआर रहमान, तब एआर रहमान भी नए नए थे, मैं भी नया था, सो यस आई वैल्यू दोस कॉम्प्लीमेंट्स।
1: यही बात है ना, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज कोई ट्रॉफी नहीं बट ये कॉम्प्लीमेंट है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वी हैव टू प्ले द सॉन्ग जिसे सुन के सोनू निगम की तारीफ निकल गई, हमारी 10 साल से निकल रही है, अरमान मलिक की आवाज, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है मैं रहूं या ना रहूं, आई कांट बिलीव इस गाने को 10 साल हो गए। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनेका, एंजॉय।

The vocal capacity of Arman Malik is unparalleled and this song, अभी भी मुझे goosebumps आते हैं इस गाने को सुन के. I think this will go down as one of those classics जो मैं आज से 10 साल बाद भी play करूंगी और हमें ऐसा ही feel होगा. Arman Malik की आवाज, Arman Malik की composition, that was मैं रहूं या ना रहूं. At RJ Kaling on Instagram पर आओ and tell me about your story. कभी कोई ऐसा compliment मिला हो जो आज भी बहुत special feel कराता है, मुझे आके बताओ. Back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. आदित्य रिखारी, रैबिट और कुटले खा का गाना, It's a Cook Studio भारत song. गाने का नाम है ए अजनबी. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम्प करके ये गाना पहली बार टॉप टू में गया है. ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत, 16 हफ्ते इस काउंटडाउन पर बिताने के बाद पहली बार ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, जल्दी जल्दी फॉलो करो, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना तो बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई माइट फीचर योर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन द शो। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल कसर क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। और ये हमारे शो का सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सेगमेंट है। इतने सारे DMs, इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि ये वाला गाना, वो वाला गाना। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज लकी अली का तेरे मेरे साथ। इस गाने के बाद इतने सारे थैंक यूज आए, इतने सारे और रिक्वेस्ट आए, और उन बहुत सारे रिक्वेस्ट में से द सॉन्ग वी गोइंग टू प्ले दिस वीक इज

गाने का नाम है दीवाना तेरा बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। साल 1999, म्यूजिक साजिद वाजिद का, लिरिक्स फैज अनवर के। ये तब के हिंदी पॉप म्यूजिक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉप एल्बम में से एक थी एंड ये गाना उसका टाइटल ट्रैक। बट बियॉन्ड ऑल द नंबर्स, बियॉन्ड द सेल्स, आज 2026 में भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ, इट टेक्स अस बैक टू दो सिंपलर टाइम्स यार, जिसके बारे में बस हम कहानियों में सुनते हैं। जब प्यार प्यारा था, इनोसेंट था, एक भोला बंदा, वो पहले पहले प्यार वाली चीजें, यू नो, जब आप किसी को चाहते थे और बस चाहकर ही खुश हैं, एक तरफा प्यार में खुश हैं, तेरी मर्जी तो आए ना आए। आई रिमेम्बर सोनू निगम ने हमें कई दफा इस शो के जरिए बताया है दैट इतने सारे लोग उनके पास आते थे, बोलते थे ये गाना सुन के इतनी जोर से प्यार आया कि मैंने जाके प्रपोज ही कर दिया। एक्चुअली 90s एंड अर्ली 2000s का ये वेरी प्रपोजल फर्स्ट सॉन्ग था। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, लेट्स फील द लव इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम। दीवाना एल्बम से दिस इज दीवाना तेरा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनेका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10, एंजॉय।

0: What an utterly butterly song, man. Sonu Nigam ki awaaz and the range in this composition. Gaane ka naam Deewana Tera on a cassette classic this week at RJ Kaneko on Instagram par aao. 90s 2000s ke yehi wale gaane, you know, it makes us feel all the love again. Kaun sa hai wo gaana? From the pop classics, humse aake share karo. We might feature your favorite next week. Now back to the countdown. It's time for the numero uno song of the week. ये गाना 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर डटा हुआ है. पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, यानी इस हफ्ते एक पोजीशन ऊपर जंप करके वापस इसने नंबर 1 की पोजीशन ले ली है. गाने का नाम है बैरन, आर्टिस्ट का नाम है बंजारे. दिस हरियाणवी सॉन्ग इज एवरीवेयर एंड वी आर हियर फॉर इट. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. एंजॉय.
1: नंबर 1.

0: doctors. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

आई लव यू ऑल। दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: Tony.
1: Radio Mirchi. Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला। तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग शुरू हो चुका है और यहाँ पर तुम्हारी चाय हो, कॉफी हो, ब्रेकफास्ट हो, सब कुछ गर्मा गर्म सर्व होंगे क्योंकि मिर्ची इज हॉट। तुम्हारे मॉर्निंग कम्यूट से लेकर तुम्हारी ऑफिस मीटिंग से लेकर तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाने का स्टाइल, तुम्हारा सोने का स्टाइल, तुम्हारा सुबह सुबह उठने का स्टाइल और साथ साथ में तुम्हारा मिर्ची सुनने का स्टाइल, बिकॉज मिर्ची इज हॉट। और आज का फंडा भी बिल्कुल सिंपल है। आज के दिन हम करेंगे थोड़ी सी गॉसिप, बॉलीवुड की बातें, मस्ती, ढेर सारा नॉस्टैल्जिया और वही मॉर्निंग मिर्चीदार एनर्जी तुमको मिलने वाले थ्रू आउट अगले कुछ घंटों तक मैं तुम्हारे साथ में रहने वाली हूँ। नाम है प्रिसिला, मेरे शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरा इंस्टाग्राम और एक्स पर नाम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। फॉलो कर लेना और साथ में मुझे तुम मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची इज माई नाम। That's 9033-64-7244. Stay tuned and

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिस्तला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग एंड लेट्स रिवाइंड कि आज के दिन पुराने जमाने में क्या हुआ था। स्टार्टिंग विद 1934, अल्कट्राज फेडरल पेनिटेंशरी रिसीव्ड इट्स फर्स्ट सिविलियन प्रिजनर। हाँ, ये वही अल्कट्राज है, अमेरिका की दी इन फेमस आइलैंड प्रिजन, जहाँ से कोई भाग नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद सबसे फेमस प्रिजन ब्रेक यहीं से हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1942, एक्ट्रेस हेडी लमार एंड कंपोजर जॉर्ज एंटाइल गॉट अ पेटेंट फॉर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्नोलॉजी। ये कैसा इन्वेंशन था दैट लेटर बिकेम फाउंडेशनल टू मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन। सो टेक्निकली हर बार तुम्हारा वाईफाई जब काम करता है, यू हैव हिस्ट्री एंड देम टू थैंक। 1965 में द वॉच रायट बिगन इन लॉस एंजलिस, लीडिंग टू अ सिक्स डे ऑफ मेजर सिविल अनरेस्ट। 1972 में द लास्ट यूएस ग्राउंड कॉम्बैट यूनिट लेफ्ट साउथ वियतनाम। 1973 में डीजे कूल हर्क होस्टेड अ बैक टू स्कूल पार्टी इन द ब्रॉन्क्स। ये जैम वाइडली कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द फाउंडेशनल मोमेंट्स इन द बर्थ ऑफ हिप हॉप कल्चर। देन कम्स 1992, द मॉल ऑफ अमेरिका ओपन्ड इन मिनेसोटा एज द लार्जेस्ट इंडोर शॉपिंग मॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड फाइनली 2003 में नेटो टुक कमांड ऑफ द इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स इन अफगानिस्तान। दैट्स इट फॉर हिस्ट्री का राउंड अप। मैं हूं प्रिस्तला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। वांट टू नो मी मोर, इंस्टा और एक्स पर मुझसे बात कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4। Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब टाइम है मौसम का हालचाल पता करने का। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 72 डिग्रीज फारेनहाइट। स्काइज जो है वो थोड़ी सी क्लाउडी है, लेकिन इट्स फीलिंग लाइक 73 डिग्रीज फारेनहाइट। बट लिसन, शाम को अराउंड 5 बजे के आसपास रेन इज एक्सपेक्टेड। सो अगर तुम उस टाइम घर पहुंचने वाले होगे, निकल रहे होगे घर के लिए, वर्क खत्म कर रहे होगे या फिर वर्क स्टार्ट कर रहे हो, अम्ब्रेला ले जाना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आज के दिन झमाझम बरसात होने वाली है। अराउंड 16 मिलीमीटर्स की बरसात फोरकास्ट में है। आज के टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं, 70-87 डिग्रीज फारेनहाइट है, लेकिन फील होगा 72 से लेकर 89 डिग्रीज फारेनहाइट तक। और ये फील लाइक इस पर डिपेंड करेगा कि ह्यूमिडिटी, सनलाइट और विंड जो है ये मिलकर एक क्या मिश्रण बनाते हैं, और उस मिश्रण को वेदर बोला जाएगा आज के दिन। गुड न्यूज आई हैव दो, यस्टरडे के कंपेरिजन में आज का टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई, इट्स प्रिटी सिमिलर। सो कोई मेजर चेंज नहीं है टेम्परेचर में। आज के दिन भी बाहर निकलोगे तो लेयर के प्लेयर बनकर जाना, क्योंकि सुबह से शाम तक में वेदर काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। एंड रेन वाइज लास्ट 24 आवर्स में 0 मिलीमीटर्स का प्रेसिपिटेशन था, और जैसे मैंने बताया अगले 24 आवर्स में वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 16 मिलीमीटर्स ऑफ रेन। सो कॉफी, चाय, सनग्लासेस, सनब्लॉक, SPF 50+++ के साथ ये सब कुछ साथ में ले जाना, और साथ में कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड ऑफ कोर्स मिर्ची सुनते रहो मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। सुनो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा

माइंडेड अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोरियोग्राफर को मैं ही सिखाता है।

0: हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और आप पता करते हैं हमारे गोल्ड का क्या हाल चाल चल रहा है।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ऑलमोस्ट टचिंग $4,400, $4,390 पर ट्राई ऑन्स इस समय गोल्ड ट्रेड कर रहा है और सिल्वर के प्राइस भी अपवर्ड ट्रेंड पर है। इससे पहले गोल्ड एंड सिल्वर वापस एग्रेसिव अपवर्ड ट्रेंड ले, RajJewels.com के साथ PAM certified gold and silver bars, 1 ounce, 100 gram, 10 ounces, kilo bars, investment bar. आइए RajJewels.com के साथ responsibly gold में invest करें। Thank you, happy morning to
0: And there you have it, gold का latest rate update सुना तुमने exclusively on Mirchi Mornings। मेरा नाम है Priscilla, connect करो मुझसे Insta और X पर, मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS। WhatsApp का number है 9033Mirchi, that's 9033647244। Stay tuned and stay hot।

You're listening to Mirchi Aavake 3 with me, Priscilla, on Mirchi Mornings. सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अर्ज्ड सिटीजंस टू जॉइन द हर घर तिरंगा कैंपेन अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे. होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट होम, सेलिब्रेट 15th ऑफ अगस्त विद प्राइड, रिमेंबर द फ्रीडम फाइटर्स एंड रिन्यू द प्लेज टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इंडिया. नंबर टू पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह हैज मेट इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल नवीन श्रीवास्तव. इंटरेस्टिंग बिट, रिपोर्ट से शाह हैड अर्लियर इंसिस्टेड ऑन मीटिंग फॉरेन लीडर्स only at the foreign minister level or above, but this time India's ambassador met him. And lastly, a 7.4 magnitude earthquake struck western Colombia, with reports saying at least 111 people have died. The epicenter was near San Jose del Palma in the Chocó region. And the U.S. Geological Survey says the quake occurred around 107 kilometers deep. Our thoughts are with everyone affected and with the families who have lost loved ones. मैं हूँ प्रिसुला तुम्हारे साथ में. मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम टू चेक व्हाट द यूनिवर्स हैज प्लान्ड फॉर यू।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी कि मेष राशि, आज फोकस घर और फैमिली पर रहेगा। कोई पुराना डोमेस्टिक इशू है, बात करके निपटा लो, ग्रुप चैट में पैराग्राफ लिखकर नहीं। फाइनेंशियल डिसीजंस में थोड़ा सा पेशेंस रखो, जल्दी का काम शैतान का होता है। लकी कलर फॉर यू इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 6। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज अपना चार्म फुल वॉल्यूम पर रखो, मीटिंग्स हो या फिर पर्सनल कॉन्वर्सेशंस हो, अपनी बात में क्लैरिटी रखो, सिबलिंग्स या नेबर्स के साथ स्वीटनेस मेंटेन करो, देसी मोहल्ला डिप्लोमेसी इज रियल। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 3। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, मनी मैटर्स आर टेकिंग सेंटर स्टेज, बजट चेक करो, सेविंग्स का प्लान बनाओ, बेसिकली बैंक अकाउंट को भी थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो दे दो उसे, एंड आज मोटिवेशन मिल सकता है टू फाइनली fix that one health habit you've been ignoring. Lucky color is cobalt blue, lucky number is 8. कैंसर यानी कर्क राशि, मून तुम्हारी साइन में है, सो इंट्यूशन एंड कॉन्फिडेंस आर गेटिंग अ लिटिल अपग्रेड, सेल्फ केयर करो एंड ट्रस्ट दैट गट फीलिंग। पर्सनल ग्रोथ के लिए आज लकी डे है, अंदर की आवाज को एयरप्लेन मोड पर मत डालना। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, आज थोड़ा सा स्लो डाउन करो चैंप, सोशल प्लान से ब्रेक लो, रिफ्लेक्ट करो, रिचार्ज करो, वर्क पे पेशेंस रखो, और बोर्डम में ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड को मेडिटेशन समझो, चेकआउट को नहीं। लकी कलर इज बर्न ऑरेंज, लकी नंबर इज 9। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, फ्रेंड्स नेटवर्किंग एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आर लुकिंग गुड, किसी ग्रुप प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशन में जंप इन करो, बस जॉइंट फाइनेंसेस में रिकॉर्ड्स क्रिस्टल क्लियर रखो, फ्रेंडशिप ब्यूटीफुल है, अकाउंटिंग स्प्रेडशीट उससे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर एंड नंबर इज 4। एंड दिस इज राशि जोन पार्ट 1, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स का राशि जोन पार्ट टू। मैं हूँ प्रसला तुम्हारे साथ में।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, करियर स्पॉटलाइट इज ऑन, लीडरशिप दिखाने का टाइम आ चुका है। सो टेक चार्ज ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। बॉस से ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखो। माइंड रीडिंग अभी भी लिंक्डइन स्किल नहीं बनी है। लकी कलर इज रॉयल ब्लू। लकी नंबर इज 1। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एडवेंचर लर्निंग एंड ट्रेवल वाइब्स आर स्ट्रॉन्ग। नया सब्जेक्ट एक्सप्लोर करो, क्लास को ज्वाइन करो या फिर फ्यूचर ट्रिप प्लान करो। ऑब्स्टिकल्स आए तो फियरलेसली फेस देम। तुम स्कॉर्पियो हो, गूगल मैप्स भी तुमसे डायरेक्शन मांगता है। लकी कलर इज क्रिम्सन। लकी नंबर इज 7। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज डीप कॉन्वर्सेशन और शेयर्ड फाइनेंसेस का टाइम है। टैक्सेस, जॉइंट मनी या फिर कोई इमोशनल इशू पेंडिंग है तो फेस इट। पुरानी रिस्ट्रिक्टिव हैबिट्स को ब्रेक करने का करेज आ गया है तुम्हें। लकी कलर इज टर्कोइज। लकी नंबर इज 5। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, पार्टनरशिप्स, बिजनेस एंड रोमांस टेक प्रायोरिटी। किसी स्पेशल पर्सन के साथ क्वालिटी वन ऑन वन टाइम स्पेंड करो और ये याद रखो, हर प्रॉब्लम का सलूशन मैं खुद कर लूंगा नहीं होता है। फ्रेंड्स पे लीन ऑन करना अलाउड होता है। लकी कलर इज बर्गंडी। लकी नंबर इज 11। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, डेली रूटीन, वर्क एंड हेल्थ नीड योर अटेंशन। वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज करो, टू डू लिस्ट स्ट्रीमलाइन करो और जो रेस्टलेस एनर्जी है उसको वर्कआउट में डालो। डंबल्स को देखो मत यार, उनको उठाकर यूज भी करो। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक पर्पल। लकी नंबर इज 10। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, तुम्हारी लाइफ में क्रिएटिविटी, रोमांस एंड प्योर जॉय आ चुका है। हॉबी के लिए टाइम निकालो, कुछ आर्टिस्टिक करो, फ्लर्ट करो। बेसिकली लाइफ को सिर्फ एक्सेल शीट मत बनाओ यार। किड्स और पेट्स के साथ थोड़ा सा इमोशनल टाइम आज स्पेंड करो। इट विल हील यू, नॉट दैट यू नीड हीलिंग बट इट विल बी गुड फॉर यू इमोशनली। लकी कलर इज सी फॉर्म ग्रीन। लकी नंबर इज 12। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन पार्ट टू। स्टार्स अपनी जगह है, रिमेम्बर स्टीयरिंग व्हील अभी भी तुम्हारे हाथ में है। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरा इंस्टा और एक्स आईडी है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो। 9033 मिर्ची इज माई नंबर। 9033 6472444। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

एंड अब मेरे जाने का टाइम शुरू हो चुका है मर्जी मॉर्निंग्स पर. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. और जाने से पहले एक बात बताकर जाती हूँ जो थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि कभी कभी ना लाइफ में सुपरस्टार, बिगेस्ट स्टार, सेलिब्रिटीज, उनको भी थोड़ा सा स्टेप अवे करना पड़ता है फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग. दैट्स राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट लायनल मेसी. रिपोर्ट्स से द इंटर मायामी स्टार इज टेकिंग एन इनडेफिनिट ब्रेक फ्रॉम फुटबॉल फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज फादर एंड लॉन्ग टाइम एजेंट Jorge Messi. Messi is currently with his family in Argentina and there is no confirmed date for his return. Inter Miami has reportedly given him open-ended compassionate leave without putting pressure on him to get back on the pitch. And honestly, that's the important bit here. Football can wait, goals can wait, matches can wait, fans can wait, everything else can wait. Sometimes life says, right now, family comes first. And this is the sad reality of life. Everyone, be it a celebrity, a commoner, a nobody, and a somebody, we all have to go through something like this, such as life. So wherever you're listening to me from this morning, maybe take that as a little reminder to call your parents, check in on someone you love, send that message you've been postponing, talk to that friend you've not spoken to in a while, forget all the grudges, because unlike a football match, life doesn't come with an extra time. And with that thought, Mirchi Mornings comes to an end. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Thank you for hanging out with me this morning. You made my day much, much, much better. Take care of yourself, stay kind, and keep that Mirchi Desi spirit shining. Bye for now. Milungi tumhe kal, same time, same place par. तब तक के लिए तुम मुझे कनेक्ट करो सोशल मीडिया पर. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: कभी-कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के रहूंगी।
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइन्स पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों की, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। देखा, लगा ना, वाकई में लगा ना। मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को, और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल, क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी। तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं, मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखनी है। नहीं नहीं, इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी एज किड्स। ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया। एंड वेल, ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी, लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म, ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल, क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी, ये सब थे। और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी। और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉल आउट हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही, लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई, ना कि ममता कुलकर्णी की। हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा। लेकिन ऑनेस्टली पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और सही जवाब है चाइना गेट। मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है। एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं। अगला इंसान कहता है नौने पौ। I still use this dialogue in my life. अगर 9:15 बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं 9:15 ही बोलती हूँ, 9:15 नहीं बोलती। लेकिन coming back to China Gate, हाँ, ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल। हाँ, और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे, एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा। इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग। सर्दियों में हम भी यही करते हैं। हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सारा ज़माना सारा का दीवाना
1: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
2: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गई यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ये वो गाना है जो आपको ऑफिस में वायरल कर सकता है। मोहित चौहान ने गाया इतनी मस्ती में ना इस गाने को, आई स्वेयर। यू नो व्हाई आपको वायरल कर सकता है? क्योंकि अगर इस गाने को आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो ना, तो आप आसपास की दुनिया जो है ना उसको तो भूल ही जाओगे, और फिर आसपास की दुनिया को भूलने के बाद जो आप अपने आप में खो जाओगे और नाचते हुए नजर आओगे और अजीब अजीब सी आप क्रियाएं करते हुए नजर आओगे ना, तो ऑफकोर्स वायरल होना तो बनता है ना बॉस। ये गाना ही वही है जो आपको दुनिया भुला देता है, आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो है वो भुला देता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की ताल पर नहीं इस गाने की ताल पर नचा देता है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम जो म्यूजिक के इतने दीवाने हैं मेरे यारा, वही तो आ जाते हैं रोज रोज ये कहने के लिए कि मान ना मान करो गानों की पहचान। अब सिंस मुझे पता ही है कि आप म्यूजिक के इतने फैन हो और म्यूजिक आपके लिए थेरेपी है, तो यहीं पर मैं एक दाव खेल जाती हूँ और रोज आपके लिए एक सवाल गाने की सूरत में चलाती हूँ और दो गानों की धुनों को मिक्स करके आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार ये दोनों गाने कौन से हैं। तो आज की जो दो धुनों का मिक्स है वो है कुछ यूं, गिव इट अ लिसन।

बस जी, अब आपको डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दो कौन से गाने हैं जो अभी आपने सुने। मिर्ची सारा इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आई एम नॉट टू श्योर आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: जो सनसनाए क्यों जिस्म थर थराए कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हम आपके एक कौन एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देयर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक कौन देखे क्या।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए और धिकताना गाना वहीं से ही शुरू होता है, राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर, आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले।
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज स्टेशनरी देखती हो ना तो चौंक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है, जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप्ड ही आते हैं, मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे, और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले। और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे, तब लगता था कि कितना काम है यार। लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पढ़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में। तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: उफ, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं। कौन सा सवाल भाई? कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना। बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है। बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया। और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक, संदीप चौटा। और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ। अरे अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए? अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार, तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा। पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए। तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ, हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे, सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, दिलीप साहब हो, राज कपूर साहब हो, या फिर हो देव आनंद, ये तीनों ऐसे दिग्गज स्टार्स थे जिन्होंने जम करके ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स की, बिकॉज ऑफ कोर्स जब इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो इंडियन सिनेमा बस स्टार्ट ही हुआ था. लेकिन दीज थ्री पीपल वर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जब कलर की बात हुई. जब कलर आने लगा इंडस्ट्री में और कलर एक्सपेंसिव भी बहुत था, तो फिर एक ना ट्रेंड चला था, क्योंकि इट वॉज सो एक्सपेंसिव. तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ऐसा करते थे कि किसी इम्पॉर्टेंट फिल्म का इम्पॉर्टेंट सीन या फिर उसका इम्पॉर्टेंट गाना जो था ना, वो कलर में कर देते थे. अब ऐसे में दिलीप साहब, देवानंद और राज कपूर साहब ने ना पूरी इंडस्ट्री को चेंज करने की ठान ली थी. सो दे डिसाइडेड कि वो बहुत सारी फिल्मों को मना करेंगे और जो फिल्में कलर में होंगी उनको करना शुरू करेंगे. अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स फिर कोशिश करने लगे थे कि वो कलर में पिक्चरें बनाएं. वेल, आज जिस फिल्म की बात होगी वो देव साहब की पहली कलर फिल्म थी. Which film am I going to talk about? ये अभी आपको पता चल जाएगा. बस कुछ गानों के उस पार, मैं हूँ श्रेया, only on पुरानी जीन्स.

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी का नाम है गाइड, जो कि देव साहब की पहली मूवी थी इन कलर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और मैं बात कर रही थी कि कैसे देव साहब, राज कपूर साहब और दिलीप साहब ने ठान लिया था कि वो भाई कलर को लेकर के आएंगे इन द इंडस्ट्री, बिकॉज एट दैट टाइम कलर बहुत एक्सपेंसिव था। सो इसीलिए ज़्यादातर पिक्चरों का इम्पोर्टेंट सीन या फिर इम्पोर्टेंट अगर कोई गाना होता है, इम्पोर्टेंट सीक्वेंस होता है, उसको कलर में कर दिया जाता था। बट दीज थ्री लेजेंड्स डिसाइडेड कि भाई अगर इम्पोर्टेंट पिक्चर भी होगी तब भी वो नहीं करेंगे अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। इस चक्कर में ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ना अगर ये तीन अपनी फिल्म में चाहिए थे तो वो पिक्चरों को कलर करने लगे। तो आज बात हो रही है देव साहब की पहली फिल्म विच वॉज इन कलर, एंड दैट वॉज नन अदर दैन हिज ओन फिल्म गाइड। सो गाइड की ना बड़ी मज़ेदार बातें हैं और कुछ ऐसी इमोशनल बातें हैं ना जो आपके दिल को छू लेंगी, जैसे कि अभी नहीं बताऊंगी, गाने के साथ बताऊंगी। सो कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गाइड फिल्म जब देव साहब बना रहे थे ना, तो ये उनके लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल फिल्म थी. सो नंबर वन, ये उनकी पहली कलर फिल्म थी. एंड दूसरी, इस फिल्म में ही वॉन्टेड एवरी थिंग परफेक्ट, ही वॉन्टेड एवरी थिंग करेक्ट, और इसीलिए उन्होंने अपने फेवरेट कंपोजर एस डी बर्मन साहब को लिया था. अब हुआ ये कि दादा एक्चुअली में उस समय काफी बीमार पड़ गए टू द एक्सटेंट कि उन्होंने खुद देव साहब से कहा कि भाई बहुत टाइम लग रहा है उनको गाने बनाने में और पता नहीं वो कब ठीक हो पाएंगे. तो इसलिए दादा ने उनको रेकमेंड किया कि क्यों ना वो कोई और म्यूजिक कंपोजर को हायर कर लें. लेकिन आपको पता है, देव साहब ने इस बात को एकदम खारिज कर दिया. ही वॉन्टेड कि गाइड फिल्म के जो यू नो डेप्थ वाले गाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एस डी बर्मन बनाए. जब एस डी बर्मन साहब ठीक ठाक होकर के 6 महीने के बाद वापस लौटे, तो पता है उन्होंने कौन सा गाना सबसे पहले बनाया? अभी बताऊंगी. वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस.

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है गाइड की, देव आनंद की पहली कलर फिल्म की। सो आई वाज टेलिंग यू कि कैसे देव साहब ने 6 महीने तक वेट किया था कि दादा यानी एसटी बर्मन साहब ठीक होकर के वापस सेट पे आ जाएं और रिकॉर्डिंग में लग जाएं। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि एसटी बर्मन उस दौरान काफ़ी बीमार पड़ गए थे, इतने बीमार पड़ गए थे कि उन्होंने देव साहब को ये तक रेकमेंड किया था दैट ही कैन गो अहेड विद सम अदर म्यूजिशियन। लेकिन देव साहब को दादा बहुत पसंद थे और उनको पता था कि उन्हीं का म्यूजिक ना इस फिल्म में 4 चांद लगा सकता है। तो जब दादा वापस आए ठीक हो करके, जो पहला गाना उन्होंने बनाया वो पता है कौन सा था? वो था ये।

गाना जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। और ये गाना ना पता है कैसे शूट हुआ है, ये चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे शूट हुआ था। और हीरोइन जो है वहीदा रहमान, वो अपने आप को शीशे में देख रही है। ऐसे विजन दिया गया है, उसी शीशे को रखा गया है कहते हैं, जिस शीशे में क्वीन पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था उस चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, देवानंद और उनके भाई विजय आनंद ने पहले, पता है, हसरत जयपुरी साहब को अप्रोच किया था। उनको लगा था कि इस फिल्म के गाने हसरत साहब से लिखवाते हैं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और आज गाइड फिल्म की बात हो रही है, द एवरग्रीन हिट फिल्म। ऑफकोर्स इट इज गाइड, देव साहब की पहली कलर फिल्म भी थी बाय द वे। सो जब म्यूजिक टीम बना रहे थे ना, देवानंद एंड उनके भाई विजय आनंद, तो उन्होंने ऑफकोर्स एस डी बर्मन साहब को तो लिया ही था, लेकिन एज अ लिरिसिस्ट दे फर्स्ट वेंट टू हसरत जयपुरी। हसरत साहब के गाने कुछ उन दोनों भाइयों को ना पसंद नहीं आए, मतलब उनको लगा कि शायद गाने थोड़े हल्के हैं, तो देन दे टर्न्ड टू शैलेंद्र जी। अब शैलेंद्र जी को ये तो पता चल गया था कि वो दोनों की दूसरी चॉइस बने, इस बात ने शैलेंद्र जी को काफी हर्ट किया था। फिर आगे क्या हुआ, मजेदार सी कहानी है। वापस आओ श्रेया के साथ, देन आई विल लेट यू नो, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची।

शैलेंद्र जी इस बात से नाराज कम हर्ट ज्यादा थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ और आज गाइड फिल्म की बात हो रही है। वेल, द फर्स्ट फिल्म ऑफ देवानंद जो कि कलर में थी। अब इस फिल्म के लिए, क्योंकि विजय आनंद और देवानंद दोनों भाई मिलके ये फिल्म बना रहे थे, उन्होंने ना जो म्यूजिक टीम रखी वो पहले थी SD बर्मन साहब एंड लिरिसिस्ट के तौर पर हसरत जयपुरी। हसरत साहब के लिरिक्स दोनों भाइयों को कुछ खास पसंद नहीं आए और देव साहब अपनी फिल्म के म्यूजिक के लिए एक्सट्रीमली कंसर्न रहते थे, बिकॉज ही थॉट कि फिल्म का म्यूजिक बहुत काम आता है फिल्म की पॉपुलैरिटी में। तो फिर दे टर्न्ड टुवर्ड्स शैलेंद्र जी। अब शैलेंद्र जी को बाय वर्ड ऑफ माउथ ये तो पता चल गया था कि पहले ये दोनों भाई गए थे हसरत साहब के पास। इस बात से वो इतने दुखी हुए कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं बने दोनों आनंद ब्रदर्स की, कि जब विजय आनंद और देव साहब उनके पास ये फिल्म लेके पहुंचे तो शैलेंद्र जी ने एक ऐसा अमाउंट कोट किया जो पहले कभी किसी लिरिसिस्ट ने नहीं मांगा था। ही थॉट, बिकॉज वो कहते हैं ना वो ईगो क्लैश हो गया, कि भाई अब मैं इतना पैसा मांगूंगा कि ये लोग अपना समूह लेकर के वापस लौट जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है क्या हुआ? देव साहब और विजय आनंद मान गए और पहला गाना, इस मीटिंग के बाद जो पहले गाने का मुखड़ा लेकर के ये दोनों ब्रदर्स वापस गए थे, वाज सो हैप्पी, वो कौन सा गाना था बताऊंगी आपको श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: और इससे पहले कि विजय आनंद और देवानंद उस मीटिंग से बाहर निकलते, तब तक उनको इस गाने का मुखड़ा मिल चुका था।
1: गाता रहे मेरा दिल, पूरी मेरी
0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। तो मैं बता रही थी कि कैसे ना देव साहब और विजय आनंद को हसरत जयपुरी साहब के लिरिक्स उस समय बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे फॉर दिस फिल्म। तो देन उनको याद आया कि शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी को ऑलरेडी पता चल चुका था ये बात कि भाई सबसे पहली चॉइस उनकी हसरत जयपुरी थे। तो शैलेंद्र जी ने ना, बिकॉज ही वॉज सो हर्ट कि वो इन दोनों भाइयों की सेकेंड चॉइस बने, उन्होंने ढेर सारा पैसा कोट कर दिया। भाई ईगो तो बीच में आएगा ही, बिकॉज दिल से उनको दुख लगा था। तो ही नेवर थॉट, शैलेंद्र जी को ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि विजय आनंद और देवानंद इतने सारे पैसे उनको देने के लिए मान जाएंगे। जब दोनों मान गए तो उस मीटिंग से निकलने से पहले ये गाने का मुखड़ा शैलेंद्र जी उनको दे चुके थे। यही गाना फ्रॉम द फिल्म गाइड कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पहली कौन सी इंडियन फिल्म थी टू गेट इनविटेशन फॉर कांस फिल्म फेस्टिवल, तो क्या आपको पता होगा? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। इट वॉज नन अदर दैन देव साहब की फिल्म गाइड। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इट वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म एवर टू बी इन्वाइटेड बाई द कांस फिल्म फेस्टिवल कमिटी। और कांस क्लासिक में इस फिल्म को, यू नो, अ सेक्शन ऑफ द फिल्म को दिखाया भी गया था। देवानंद एक्चुअली वॉक द रेड कार्पेट फॉर दिस इवेंट, और वो भी, यू नो, उनके साथ कौन थे? इंडियन एम्बेसडर उस टाइम के टू फ्रांस। सो इट वॉज huge thing and a lot of television channels and a lot of television channels तो नहीं होते थे, मतलब दूरदर्शन और सबने ना, न्यूज ने, सब ने इस बात को कवर किया था। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज ना देव साहब की फिल्म गाइड, जो कि उनकी पहली कलर फिल्म भी थी, बस उसी की बातें चल रही हैं, उसी के गाने हो रहे हैं, और आप और मैं मिल करके रिलैक्स कर रहे हैं। सो डोंट यू गो एनीवेयर।

सिर्फ ऐसे एक गाने के लिए आरडी बर्मन साहब ने इनको कन्विंस किया था कि बस एक बार तबला बजा दीजिए. एंड दिस रिमेन्स द ओनली सॉन्ग इन इंडियन हिंदी सिनेमा जहां पर इन्होंने तबला बजाया. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ पंडित शिव कुमार शर्मा, उन्होंने इस गाने में, गाइड फिल्म के गाने में तबला बजाया. सो एट दैट टाइम उन्होंने तबला छोड़ दिया था बिकॉज ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन संतूर. लेकिन आर डी बर्मन साहब पंचमदा उनके घर गए और उनको घंटों समझाया कि बस एक ही गाने पे आपका तबला हो जाए, अदरवाइज गाना अधूरा रहेगा. वेल, वो कौन सा गाना है? सैया बेईमान फ्रॉम द फिल्म गाइड. एस डी बर्मन साहब की धुन है, शैलेंद्र जी के लिरिक्स हैं, लता जी की आवाज़ है और तबला बाय पंडित शिव कुमार शर्मा. अब नेक्स्ट मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

जब विजय आनंद और देव आनंद साहब ने ऑथर आर के नारायण से बात की तो उन्हें पता चला द गाइड जो उन्होंने किताब लिखी थी वो एक्चुअली में रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड थी। सो आर के नारायण ने उनको बताया कि द प्लॉट ऑफ द नॉवल वॉज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द आउटब्रेक एंड अ ड्रॉट प्रॉब्लम दैट टुक प्लेस उनके खुद के होम टाउन में जो कि मैसूर में था। सो वहाँ पे एक महीने तक करीब पानी नहीं बरसा था और लोगों को प्यास के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था। एंड देन ही सेड कि एक्चुअली में ये हुआ था कि म्यूनिसिपल काउंसिल ने डिसाइड किया था कि वो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे और इसलिए अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत सारी प्रार्थनाएं और रिचुअल्स कर रहे थे वो कावेरी रिवर कावेरी के बैंक पे जा करके बैठे और वहाँ पे जब उन्होंने प्रेस की तो 12th डे इट एक्चुअली रेन्ड। इसी एक बात को द गाइड बुक से उठा करके इसमें लव स्टोरी को थोड़ा पिरो करके इन दोनों ब्रदर्स ने दी आनंद ब्रदर्स विजय आनंद एंड देव आनंद ने द गाइड में पेश किया। लेकिन आपको क्या लगता है ये फिल्म चली थी? वेल अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नहीं कर पा रहे थे कि विजय आनंद और देवानंद ने इतनी ऑफ बीट फिल्म बनाई है, और उस टाइम पे लोगों को ना इस फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं समझ में आ रहा था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। वेल, कहते हैं कि जब ये मूवी थिएटर में खुली तो बहुत ही, मतलब जब खुली थी तब तो भाई बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पे रिस्पॉन्स था, पर धीरे धीरे ऑडियंस कम होने लगी। बट आफ्टर अ वीक इस फिल्म की ऑडियंस फिर बढ़ने लगी एंड देन इट वेंट ऑन टू बिकम ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स एंड इट वन 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स। ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी गाइड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम बैक राइट हियर।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड इट्स टाइम फॉर मी टू गो। लेकिन जाने से पहले आपको तो पता ही है कि गड्डी में बैठना होता है और दूर हाईवे तक मेरे साथ जाना होता है। और आज का मेरा हाईवे हिट ना उन लोगों पे है जो खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं और गम में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। सो मेरी मम्मी हमेशा एक बहुत अच्छी बात कहती हैं कि बहुत खुशी आपके दिमाग पे नहीं चढ़नी चाहिए और दुख आपके दिल पे नहीं चढ़ना चाहिए, बिकॉज ये तो जीवन है।
1: यही है
0: रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ। On that note, this is Shreya signing off. अब मिलते कल।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 10th ऑफ अगस्त यानी बीते कल से इंडियन फैमिली का हर दूसरा सदस्य एक साथ टीवी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है।
2: श्रुति,
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
1: क्योंकि बाबू मोशाय शो ही कुछ ऐसा है। नाम है इसका कौन बनेगा करोड़पति। दिस टाइम इट इज द 18th एडिशन, जिसके प्रीमियर एपिसोड पे अपनी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बटवारा 1947 को प्रमोट करने के लिए प्रीति जिंटा, सनी देओल और उनके बेटे करण देओल नजर आए। द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 14th ऑफ अगस्त, जिसके प्रमोशंस फुल स्पीड में चल रहे हैं। बाकी मैंने ऐसा इसलिए बोला कि भाई इंडियन फैमिली का हर सदस्य टीवी स्क्रीन्स के आगे नजर आएगा इस शो के लिए, क्योंकि मैंने तो अपने आसपास यही होते देखा है यार। केबीसी की शुरुआत हुई थी साल 2000 में, 3rd of July वाज द डेट। एंड ऑनेस्टली इस शो के लिए मेरे फैमिली का हर मेंबर अपने आप को उस वक्त तक फ्री कर लेता था कि भाई सब साथ बैठ के ये शो देखेंगे और जो स्क्रीन पे सवाल आ रहे हैं उसके बेसिस पे अपने इंटेलिजेंस को भी आंकेंगे। तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए सदी के महानायक बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट्स को होस्ट करते हुए। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

नी तू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट

0: गुड़ी किन खालिया गुड़ वाली चा किन पीती
1: वो
0: जिदा नाड़ा किन खिचया
1: खिच
0: के मर किन स

0: झुमका
1: हिंदी फिल्में सिर्फ कहानियों की वजह से नहीं चलती।
2: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: सो माय डियर बाबू मोशाय, आपने ये नोटिस तो किया ही होगा कि फिल्में सिर्फ उसके प्लॉट की वजह से नहीं बट बहुत सारी अलग अलग चीजों की वजह से अच्छी बनती है। वो म्यूजिक हो, बैकड्रॉप हो, एक्टर्स हो, या फिर जो कॉस्ट्यूम वो पहन रहे हैं वो हो। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्टर्स ने फिल्मों में इस्तेमाल की उनको लेटर ऑन ऑक्शन किया गया और उस फंड को चैरिटी के लिए यूज किया गया। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ उन्हीं चीजों की बात कर रही हूँ। वे लिस्ट में सबसे पहले हमने बात की फिल्म लगान से आमिर खान के बैट के बारे में, और अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म देवदास से माधुरी दीक्षित के लहंगा के बारे में। सो ये फिल्म आई थी इन द ईयर 2002, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, जिसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ लीड रोल्स में थे। और आपको वो गाना याद होगा, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, हंजी मार डाला। तो इस गाने में जो लहंगा पहन रखा है माधुरी दीक्षित ने, दैट ग्रीन एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन वाला लहंगा, उसको ऑक्शन पे डाला गया था एंड फाइनल बिड फॉर द सेम वाज 3 crores। कैन यू बीट दैट। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर तीन पे बात करते हैं फिल्म ओ माय गॉड से अक्षय कुमार के सूट के बारे में। वेल ये फिल्म आई थी इन द ईयर 2012, जिसको उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया था। एंड इस फिल्म का एक सीक्वेंस है जहां अक्षय कुमार एक काले रंग के सूट में नजर आते हैं। वेल इस सूट को लेटर ऑन एक जायंट रिटेल साइट पे ऑक्शन किया गया था फॉर 15 lakh, और इस अमाउंट को चैरिटी के लिए यूज किया गया। सो या फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे कमाई नहीं करती, लोगों का प्यार भी कमा जाती हैं। वेल ऐसी ही दो और चीजों की बात बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। टिल देन यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइटेड ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, जिसका नाम है श्रुति।